भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, काम सौंदर्य और सृजन शक्ति का प्रतीक है। विश्व का जो मंगल विधान है, संसार में जो कला वैभव है, वो सब काम का ही विस्तार है। हमें संसार को सुंदर और कलामय बनाना है, कला और साहित्य की रक्षा और समृद्धि करनी है।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

अभी आप शर्मा बंधु के आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे, और अब अंत में सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में ये भजन।

0: महेंद्र कपूर और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं नींबू घास के संदर्भ में। जी हाँ, नींबू घास को आंगन के पिछवाड़े, बाड़ों व बाग बगीचों में उगाया जा सकता है। इसका प्रयोग अदरक की जगह सर्दी जुकाम, खांसी से सामयिक छुटकारा दिलवाने के लिए, चाय बनाने में आदि में होता है, इसलिए इसे अदरक घास भी कहते हैं। व्यापक रोपाई बारिश के दिनों में की जा सकती है। नींबू घास एक बहुवर्षीय पत्तियों से आच्छादित सुगंधित वानस्पतिक शाक है। जहाँ तक नींबू घास के लिए जलवायु का सवाल है, तो इसे उष्ण सम शीतोष्ण व सर्दी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। हमारे इन द्वीपों की गर्म व आर्द्र जलवायु, पर्याप्त धूप और पूरे वर्ष समान रूप से वितरित बारिश, जो कि औसतन 3000 मिलीमीटर होती है, नींबू घास के लिए आदर्श मानी जा सकती है।

नींबू घास को बीज द्वारा नर्सरी में पौध बनाकर अथवा पुरानी फसलों की जड़दार कलमों, जिसे कि हम स्लिप कहते हैं, इनका प्रयोग कर खेतों में लगा सकते हैं। प्रायः इसे जड़दार कलमों द्वारा ही उगाया जाता है। स्लिप के लिए पौधे के पुराने जड़ों को उखाड़कर एक एक स्लिप अलग कर ली जाती है। जहाँ तक पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की दूरी का सवाल है, तो आमतौर पर पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर व कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। सामान्यतः नींबू घास की रोपाई वर्षा ऋतु में होती है। सिंचाई की सुविधा होने पर इसे हम पहले भी लगा सकते हैं। एक बार फसल स्थापित हो जाने के बाद नींबू घास की फसल से हम 5 वर्ष तक उत्पादन ले सकते हैं। बीजों के बोने या रोपाई के पूर्व खेत में 4 से 6 टन कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। सामान्य मिट्टी में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस व 16 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा रोपाई के समय दी जाती है तथा

0: बोने या रोपाई के पूर्व खेत में 4 से 6 टन कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। सामान्य मिट्टी में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस व 16 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा रोपाई के समय दी जाती है तथा शेष नाइट्रोजन प्रत्येक कटाई पर बराबर बराबर मात्रा में प्रयोग में लाते हैं। चूंकि इसे हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं, इसलिए खेत में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। फसल स्थापित होने की पहली अवस्था पर 45 दिन में निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 60 ग्राम डाइथोरॉन या 200 ग्राम ऑक्सी फ्लोरोफेन नामक शाकनाशियों से प्रति एकड़ उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक कटाई के पश्चात निराई गुड़ाई करने से फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, रोपाई के 90 से 100 दिन बाद प्रथम कटाई ली जाती है। मिट्टी की उर्वरकता तथा वृद्धि के अनुसार बाद की कटाइयां 60 से 75 दिन के अंतराल पर की जा सकती है। नींबू घास को भूमि की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से लगातार 4 से 5 वर्षों तक काटा जा सकता है। नींबू घास से जो तेल मिलता है, इसका बहुत उपयोग होता है। सुगंधित तेल का उपयोग साबुन, सिर के तेल, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, टॉफी उद्योग, पेय पदार्थों, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि में किया जाता है। इसके रासायनिक संगठनों का उपयोग विटामिन ए बनाने में होता है। लोक वनस्पति के रूप में इसकी पत्तियों का लेप जानवरों को गैस की बीमारी से छुटकारा दिलाने में लाभदायी माना जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस

0: बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's unified payments interface, UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
3: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, Prime Minister praised UPI as ultimate tool for financial inclusion, successfully

जहाँ रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MB बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल बृहस्पतिवार 10 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल 10 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज

0: जब से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल 10 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल बृहस्पतिवार 10 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल बृहस्पतिवार 10 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल ननकौरी माकाचुआ और आफ्राबई होते हुए कैम्बलबी की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल 10 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान 13 तारीख को रात 9 बजे कैम्बलबी से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल बृहस्पतिवार 10 तारीख को प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल 10 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 10 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल बृहस्पतिवार 10 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 10 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल 10 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 10 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान अगले दिन 11 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, हर किसी की जिंदगी में एक सितारा जरूर होता है। कोई सितारा आसमान में चमकता है तो कोई हमारे दिल में। तभी तो किसी की आंखें सितारों के समान जगमगाकर हमारी जिंदगी को रोशनी से भर देती है।

दोस्तों, कुछ सितारे दूर रहकर भी रोशनी देते हैं और कुछ हमारे इतने करीब होते हैं कि उनकी मौजूदगी ही हमारी दुनिया को खूबसूरत बना देती है। ऐसे में जिंदगी का हर नज़ारा हसीन लगने लगता है।

सितारा सिर्फ रोशनी का नाम नहीं है, सितारा उस उम्मीद का नाम है जो अंधेरों में भी हमारा हाथ थामे रखती है, उस सपने का नाम है जो टूटकर भी हमारी आंखों में चमकता रहता है। ऐसे में दोस्तों कोई बहुत खास ही होता है जो सितारा बन चमकता है हमारी जिंदगी के आसमान में, जाने अनजाने उन्हें हम पल पल याद करते रहते हैं।

कभी-कभी जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब लगता है हमारी सारी खुशियां कहीं खो गई है, लेकिन तभी कोई एक छोटी सी रोशनी हमें फिर से जीने की वजह दे जाती है और वही रोशनी हमारा सितारा बन जाती है। इसलिए दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी में मौजूद सितारों संग सप्रेम रहे। इसी दुआ के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी गीता। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान की 356वीं कड़ी।

विमान से उतरकर श्री राम ने गुरु, अन्य मुनियों तथा पूजनीय व्यक्तियों के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीष पाया। भरत आकर अग्रज के चरणों से लग गए। दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। श्री राम भरत से बार बार कुशल क्षेम पूछते हैं, किंतु भरत की वाणी जैसे मौन हो गई है। सभी भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। उधर से माताएं इस प्रकार दौड़ी आ रही हैं जैसे नवजात बछड़ों से दिन भर की बिछड़ी कौएं हुंकारती, थानों से दूध की बूंदें टपकाती दौड़ती चली आती हैं। नगर निवासियों की मिलने की उत्कंठा देख श्रीराम ने एक ही समय में अनेक शरीर धारण कर सबको कृत कृत्य कर

अभी आप रामचरित मानस गान की 356वीं कड़ी सुन रहे थे। गायिका थी अनुराधा पौड़वाल तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 12 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से ठीक उसी समय सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित शिक्षक श्री जे प्रकाश राव से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। साथ ही आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे हेमंत कुमार, पंकज उधास, आशा भोसले और अशोक खोसला। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर अमान अली बंगश का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन आप सुन पाएंगे गीत गाता चल। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम

का लुत्फ उठाइए सवेरे 10 बजे, दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1368वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रलोक का आनंद लीजिए 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर श्रोता कुछ फिल्मी गीत सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे अब्दुल रब चौस, रानी रूपलता और छोटे यूसुफ। आपके नाम फिल्मी पैगाम, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स, और 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा ककाना गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की छठी कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में एक ही संगीतकार द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुन पाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर श्रोता कुछ पुराने गीतों का आनंद ले पाएंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में श्री कन्हैया लाल प्रसाद से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। नारियल के बगान में मिश्रित खेती दर्द भरे नगमे फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 6:30 पर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। तत्पश्चात विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चर्चा भी आप सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। और फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम होगा सरगम रात 10 बजे, जबकि रात 10 बजे आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: UPI माध्यमेन चतुश्शताधिक द्विसहस्रकोट्यधिकाः धन विनिमयाः अभिलेखिताः। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् धन विनिमय व्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालीषु वैश्विक सहकारः नूतनं लक्ष्यं भवितव्यम्।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी

0: और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान यत् भारतेन नवोन्मेषं सर्वसमावेशितान् च केन्द्रे निधाय वित्तीय प्रौद्योगिक्याः यात्रा नूतनानि शिखराणि प्रति नीता अस्ति। असौ उक्तवान् यत् एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम चेत्यादयः प्रविधयः वित्तीय क्षेत्रे नवीन संभावनानां द्वाराणि उद्घाटयन्ति। चतुर्दिवसीयं ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्येतत् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य एकादश दिनांक पर्यन्तं मुंबई नगरे आयोजितः अस्ति। ध्यातव्यमिदं यत् फेस्ट इदं ह्यः एव आरब्धमासीत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् संकटकाले भारतं सर्वदा दृढतया श्रीलंकायाः पक्षे स्थास्यति। सः उक्तवान् यत् भारत श्रीलंका देशयोः सम्बन्धाः समान इतिहास संस्कृति आस्थासु आधारिताः सन्ति। भारतीय प्रवासी समुदायेन सह संवादावसरे सः एतत् उक्तवान्। असौ एतदपि कथितवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये घनिष्ठाः सांस्कृतिकाः रिक्थसम्बद्धाश्च सम्बन्धाः सन्ति, येन द्विपक्षीय सम्बन्धानां विकासाय सुदृढाधारः प्रदत्तः अस्ति। श्रीसिंहः कोलम्बो नगरं प्राप्तवान्। ध्यातव्यमिदं यत् तत्र असौ श्रीलंकायाः शीर्षनेतृत्वेन सह वार्तां करिष्यति। भारतस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः दीपक मिश्रः कटकनगरे सरला साहित्य सांसदा कलिंगरत्न पुरस्कारेण सम्मानितः अस्ति। पुरस्कारे देवी सरस्वत्याः रजत प्रतिमा, प्रशस्तिपत्रञ्च सम्मिलिते स्तः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणाः न्यायमूर्तिः मिश्रः उक्तवान् यत् मनुष्यः जीवने कियत् दूरमपि गच्छेत् तथापि जन्मभूमेः मृत्तिका, तस्य स्मृतिं, परिचयं, सांस्कृतिक परम्पराञ्च निरन्तरं निर्माति। संविधानस्य उल्लेखं कुर्वन् न्यायमूर्तिः मिश्रः प्रस्तावनायां वर्णितं बन्धुत्वम् एकं जीवन्तनैतिक सम्बन्धं वर्णितवान्। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रालयेन अद्य वाराणस्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय पोषण मासस्य शुभारम्भः करिष्यते। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितौ रुद्राक्ष कन्वेन्शन सेंटर इत्यत्र अस्य अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे राष्ट्रिय पोषण मासस्य विषयो वर्तते अस्माकं आंगनवाड़ी केन्द्राणि अस्माकं दायित्वम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 18.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:24। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी 9वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से लोगों से आरोग्य सेतु 2.0 ऐप डाउनलोड कर आभा आईडी बनाने की अपील की गई है। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाष ग्राम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज क्लब का उद्घाटन किया गया। सुबह के समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह इतना बड़ा परिवर्तन है कि फिनटेक की चर्चा यूपीआई के बिना अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री ने तकनीकी सशक्तिकरण के अपने मूल सिद्धांत को दोहराते हुए यूपीआई को वित्तीय समावेशन का सबसे अच्छा साधन बताया, जिसने पारंपरिक बैंकिंग मॉडलों की ओर से उपेक्षित क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक पैठ बनाई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू

भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी नौवां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पोषण एक स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध समाज की आधारशिला है। इस वर्ष के पोषण माह का विषय हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है। यह महीना भर चलने वाला अभियान आहार में विविधता, पर्याप्त प्रोटीन सेवन, ताज़ा भोजन, सामुदायिक स्वामित्व, शुरुआती बाल विकास और PMMVY के माध्यम से मातृत्व स्वास्थ्य पर केंद्रित है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से आहार विविधता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल विकास तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने अभिभावकों, युवाओं और समुदाय से पोषण माह में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने द्वीप समूह में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की स्थापना के लिए संभावित स्थलों का आकलन शुरू कर दिया है। यह कदम मलाका जलडमरू मध्य के पास भारत द्वारा रणनीतिक और नागरिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच द्वीप समूह की ऊर्जा क्षमता को मजबूत कर सकता है। BARC की टीम ने उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को संभावित स्थलों तथा प्रस्तावित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की योजना की अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उनकी नेतृत्व क्षमता, नवोन्मेषी विचारों, रचनात्मकता और विकसित भारत #2047 के दृष्टिकोण के प्रति समाधान प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। इसके अंतर्गत विकसित भारत क्विज, निबंध प्रतियोगिता, जिला स्तरीय चैंपियनशिप, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और नई दिल्ली में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल है। इस संबंध में माई भारत आज शाम 3:30 बजे अंडमान महिला मंडल में द्वीप समूह के युवाओं की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है आरोग्य सेतु ऐप और लैंग्वेज क्लब। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया गया है। यह ऐप नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाता है। इस ऐप के माध्यम से लोग आभा ID बना सकते हैं। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच, कागज आधारित पुराने मेडिकल दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल रिकॉर्ड में बदलने की सुविधा, AI आधारित स्वास्थ्य सुझाव, स्कैन और अपनी रिपोर्ट साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। विभाग ने सभी लोगों से आरोग्य सेतु 2.0 ऐप डाउनलोड कर अपनी आभा ID बनाने की अपील की है। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रचार समिति के अध्यक्ष TSG भास्कर ने प्रशासन से द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी और उनकी कीमतों में हो रही अत्यधिक वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशक को लिखे अपने पत्र में श्री भास्कर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग हर आवश्यक वस्तु के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस असाधारण मूल्य वृद्धि के कारणों की जांच करने और पूरे द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। समावेशी शिक्षा पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाष ग्राम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज क्लब का उद्घाटन किया गया। इस क्लब का उद्घाटन ग्राम पंचायत सुभाष ग्राम के उप प्रधान एले चेलियन ने किया। साक्षरता गतिविधियों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भाषा विकास और सार्थक

जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक प्रोजेक्ट कार्यालय द्वारा इस पहल का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान ने GPHAR के सहयोग से एडवांसिंग साइंस एम्पावरिंग फैमिलीज विषय के तहत दो दिवसीय ग्लोबल हेल्थ समिट की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा नवोन्मेष के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों और उभरते विकास पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञ व्याख्यान, आदान प्रदान सत्र, कार्यशालाएं, पेपर और पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से रोग उन्मुखी रोधी प्रतिरोध निवारक फार्माकोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से मवेशियों के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार लाने और समय पर निदान व तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से डेयरी किसानों की सहायता करने के निरंतर प्रयासों के तहत कल बम्बूफ्लाट में स्वास्थ्य सह बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान गायों की स्वास्थ्य जाँच कर पशुपालकों को आवश्यक परामर्श दिया गया। कार्यक्रम में पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड और कृत्रिम गर्भाधान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि निदेशालय में पीएम RKVY के तहत अनुबंध के आधार पर लेखाकार एवं सचिवालय सहायक के पदों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में उम्मीदवारों की चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी 9वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से लोगों से आरोग्य सेतु 2.0 ऐप डाउनलोड कर आभा ID बनाने की अपील की गई है। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाष ग्राम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज क्लब का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, अपने देश से प्रेम करना और देश की उन्नति के लिए काम करना देशभक्ति कहलाता है। सच्चा देशभक्त केवल देश की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए त्याग और सेवा भी करता है। एकता की डोर से बंधा है मेरा देश, भारत की मिट्टी से जुड़ा है हर भारतीय का वेश।

श्रोताओं, एक अच्छा नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है। वह नियमों का पालन करता है, दूसरों का सम्मान करता है और देश की संपत्ति की रक्षा करता है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं, यही हमारी सबसे बड़ी शान है।

श्रोताओं, हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमें उनके साहस और बलिदान का सम्मान करना चाहिए। सरहद पर जो वीर खड़े हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उन वीर जवानों को दिल से प्रणाम करते हैं।

0: দেশ রাগিণী। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, जिंदगी शिकायतों से नहीं, कोशिशों से निखरती है। मन में अगर उम्मीद हो तो अंधेरों में भी रोशनी खिलती है। जो हार कर रुक जाते हैं, मंजिल उनसे बिछड़ती है। जो चलते हैं हौसलों के संग, उनकी ही किस्मत संवरती है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री जे प्रकाश राव से ली गई ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कहा जाता है एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह अपने विद्यार्थियों को जीवन को सही दिशा देने का काम करता है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को केवल यह नहीं सिखाता कि क्या सोचना है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे सोचना है। कार्यक्रम में आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से, एक ऐसे ही शिक्षक से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

0: 2026 से सम्मानित किया गया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं श्री जे प्रकाश राव का। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: प्रकाश जी, आपको इस उपलब्धि के लिए, इस सम्मान के लिए हमारे पूरी आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में हमें बताइए।
1: बिल्कुल, मेरा नाम प्रकाश राव जे है। मैं PM श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मायाबंदर में PGT इंग्लिश के तौर पर नियुक्त हूँ। पर मेरी शिक्षा जो है शादीपुर स्कूल से शुरुआत हुई थी, फिर तत्पश्चात मेरा जो शिक्षा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबडीन बाज़ार से जो 12वीं तक मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद मेरी व्यक्तिगत चुनौतियां हैं, जो मैं बचपन से दिव्यांग हूं, तो 12वीं के बाद मुझे जो है वैजाग हॉस्पिटल में मेरी इलाज कराया गया था। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से चलने का योग्य बना एल्बो स्टिक के माध्यम से। फिर उसके बाद मैं एक साल के ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने फिर से अपना शिक्षा के दौर को शुरुआत की एज ए टीचर ट्रेनी के तौर पर ग्यारह शर्मा में। फिर उसके बाद 2006 में मेरी नियुक्ति हुई GPS मायाबंदर में। तो उस 2006 से लेकर आज तक मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। शिक्षा के दौरान भी मैंने कई सारे नकारात्मक सोच का शिकार हुआ हूँ, लेकिन मैं उन सारे नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक रूप से लिया, ताकि हम दिव्यांग होने के बावजूद भी इस समाज में एक अच्छा योगदान दे सके, एक अच्छा आदर्श बन सके दूसरों के लिए। इसलिए मैंने बढ़ चढ़ कर हर एक काम में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं इसका आनंद मुझे प्राप्त हुआ।
0: जी प्रकाश जी, आप एक शिक्षक के तौर पर पिछले 20 सालों से आप लगे हुए हैं, अपना योगदान आप दे रहे हैं, तो आपके अब तक के शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका सफर है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, बताने में मुझे बेहद खुशी है मैम। जैसे 2006 में एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्त हुआ था, तो जब मेरी नियुक्ति वहाँ पर हुई है तो मेरे जो व्यक्तिगत चुनौतियाँ थी उस दौरान मैंने कई सारे अनुभव प्राप्त किए थे। कई सारे चीज़ों से मैं वंचित रह गया था, जैसे खेलकूद, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना, ये सारी चीज़ से वंचित हो गया क्योंकि मेरा मूवमेंट कम था। तो मैं अपने आप को बच्चों में देख पाया। तो जैसे जैसे मैं बच्चों की भावनाओं को समझने लगा, मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लग गया। जैसे सबसे बड़ी पहल थी कि सरकारी स्कूलों में एक बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा जो सरकार का नियम था, उसे मजबूत करने के लिए मैंने एक पहल बाला को अपनाया, जो सरकार का नियम थी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो उस दौरान मैंने देखा, जैसे मैंने पूरे विद्यालय को चित्रों से मैंने भर दिया था, शिक्षा से जुड़े चित्रों से, तो बच्चे में बदलाव देखने को मिला। बच्चे हंसते खेलते उठते बैठते पढ़ने लग गए थे और अभिभावकों का भी परिवर्तन हमें देखने मिला। तो ऐसे ही एक के बाद एक मैंने पहल की और जिसमें मेरे डिपार्टमेंट में भी बहुत सहयोग दिया। तत्पश्चात मैंने विज्ञान केंद्र बनाए वहाँ पर चार, वो भी शिक्षा विभाग का पहल थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विज्ञान केंद्र बनने के बाद बच्चों में जो है विज्ञान के प्रति जागरूकता देखने को प्राप्त हुई, वे विज्ञान को जो अपने जीवन से जोड़ पाए, विज्ञान के महत्व को समझ पाए। उसके बाद मैंने ऐसे कई सारे पहल की, जैसे हमने देखा कि सरकारी स्कूलों में भले ही सरकार कई सारे पहल लाते हैं, कई सारे योजनाएं लाते हैं मुफ्त में, तब भी हमने देखा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की बढ़ोतरी कम थी। इसके लिए मैंने एक पहल की थी, झांकी की प्रस्तुति। 2019 में मैंने एक झांकी की प्रस्तुति की थी वहाँ पर, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सरकार की मुफ्त योजनाओं को दर्शाया था, कि जैसे मिड डे मील हो गया, फ्री यूनिफॉर्म स्टेशनरी, ऐसे अन्य सारे जो सरकार पहल की है बच्चों को देने के लिए, वो सारे योजनाओं को मैंने चित्रों के माध्यम से झांकी में प्रस्तुत की। उसके बाद मैंने देखा कि उससे कई सारे बच्चे, कई सारे अभिभावक, कई सारे उच्च अधिकारी प्रभावित हुए और उसके बाद सरकारी स्कूलों में बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई। PM श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं लैब्स को, लाइब्रेरी को, तो हमने बच्चों की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये पहल थी, जिसमें हमारा शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मदद है हमारे लिए, जो हमारा DO साहब हैं, जो प्रकाश हवलदार, उनकी भी बड़ी मदद थी, उनकी भी बड़ी सपोर्ट थी, जिसके माध्यम से ये पहल हमने की। और बताने में बेहद खुशी है कि पूरे मायाबंदर क्षेत्र में कुल मिलाकर 33 सरकारी स्कूलें हैं और 5 प्राइवेट स्कूलें हैं। तो 33 स्कूलों में से मैंने 22 स्कूलों में काम की और 22 स्कूलों में भी बच्चों की बढ़ोतरी देखने मिली और बच्चों में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी बढ़ोतरी है और बेहद खुशी है। और वैसा ही अगर शिक्षा विभाग का सहयोग हमें मिलेगा तो हम और भी आगे अच्छे काम करेंगे।
0: जी प्रकाश जी।

0: आपको इस बात की जानकारी कब मिली कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने वाला है? आपको जब पता चला तो आपने कैसा महसूस किया? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के आपका जो सफर है, इसके बारे में हमें बताइए।
1: बिल्कुल, 21 अगस्त 2026 को मुझे पता चला मैम कि मेरी उसमें सिलेक्शन हुई है। तो ये एक भावनात्मक अनुभव है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरी व्यक्तिगत चुनौतियाँ थी। तो ये जो पुरस्कार है, सिर्फ मैं इस पुरस्कार को व्यक्तिगत रूप में मैं नहीं देखता, इसके पीछे मेरा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी शामिल है और मेरे साथ काम करने वाले शिक्षक शामिल हैं, मेरे खुद के जो बच्चे जिसे मैंने पढ़ाई वे शामिल हैं, उनके माँ बाप शामिल हैं, मेरे परिवार शामिल हैं। तो ये जो पुरस्कार है, मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। और ये केवल मेरे लिए पुरस्कार ही नहीं, बल्कि एक संदेश भी है उन लोगों के लिए कि दिव्यांग भी कुछ कर सकते हैं अगर हम उन पर भरोसा जताते हैं। तो कि मैं एक समाज में एक अच्छा योगदान दे पाया बच्चों के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति, तो मैं ऐसा ही सहयोग मेरे अपने डिपार्टमेंट से भी आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी मैं वैसा करने की कोशिश करूँगा।
0: जी प्रकाश जी, आपको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके साथी शिक्षक और खासकर आपके विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया रही, इस बारे में बताइए।
1: देखा जाए तो सभी बहुत दिल से खुश हैं, क्योंकि इस पहल में और मेरे पूरे शिक्षा सफर में ये सारे लोग मुझसे जुड़े हुए थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे शिक्षा विभाग का, मुझे इस योग्य समझे और मेरे सारे पहलों को सराहना की और मुझे मदद दी, प्रशंसा की, ताकि मैं और आगे अच्छा कर सकूं। और मेरे साथी शिक्षक भी मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं कुछ बेहतर करूंगा। और रहा सवाल मेरे बच्चों का, बच्चे सारे बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझसे जुड़े ही रहते हैं, और मेरा भी यही प्रयत्न रहता है कि मैं उन बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकूं, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी से दे सकूं, क्योंकि मायाबंदर क्षेत्र में अत्यधिक फैसिलिटीज ना होने का एक सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा क्षेत्र में होता है बच्चों को। तो मैं नहीं चाहता इन सीमाओं को जो है बच्चों को शिक्षा में सीमा बाधाएं बन जाएं, इसीलिए मैं बढ़ तक कोशिश करता हूं, इसीलिए सारे बच्चे मुझसे बेहद प्यार करते हैं। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा स्कूल में आने का, तो मैं देखते हैं कि इनका प्रतिक्रिया और कैसे मुझे खुश करता है।
0: प्रकाश जी, जो बच्चे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं या कहे कि जो भावी शिक्षक हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे एक सकारात्मक सोच लेकर चले, अच्छा शिक्षा ले और समाज में एक बेहतर योगदान दे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चों में एक सकारात्मक सोच रखना या जीवन में आए हुए बाधा को एक सही मार्गदर्शन पाना बेहद मुश्किल हो रहा है उनको। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही कोशिश भी रहेगा उनको कि वे अपने शिक्षा को अच्छी तरह से ले और अपना एक सही नज़रिया बनाए रखे और जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उनको बखूबी वे उसका सामना करे, उनसे एक सीख हासिल करे और आने वाले दिनों में समाज में एक बेहतर योगदान दे सके। दूसरी तरफ मैं भावी शिक्षकों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, भले ही हम कितनी ही मुश्किलों के दौरान जूझ रहे हों, भले ही हमारे पास सुविधाएं ना हो, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से अगर हम दिल से कुछ करने की सोचें तो कहीं ना कहीं हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और उस पहल में हमें सफलता भी मिलता है। तो मेरा यही उम्मीद है शिक्षकों से भी, बच्चों से भी, कि आने वाले दिनों में हम एक सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ेंगे और सुनहरे भविष्य का आशा करेंगे।
0: जी, हौसला, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम हो तो हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो प्रकाश जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री जे प्रकाश राव से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। इनसे भेंट कर रही थी हेमलता राव तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। और श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म मोहरा का ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं, वधुन बनाई है वीजू शाह ने।

और अब अंत में सुनिए जतिन ललित के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म खिलाड़ी का ये गीत, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में बोल अनवर सागर के हैं।

श्रोताओं, ज़िंदगी को आसान बनाना है तो थोड़ा मुस्कुराना सीखो। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढकर हर लम्हे को अपनाना सीखो। ये गिले शिकवे छोड़कर कुछ बातों को भुलाना सीखो। जो गुज़र गया उसकी फ़िक्र छोड़कर अपने आज को संवारना सीखो। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।

अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता

0: स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme

0: building for resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
2: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
4: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर

0: के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज यूपीआई इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ इंडियाज फिनटेक सक्सेस स्टोरी। Defense Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
4: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
3: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system,

अभी आप हेमंत कुमार की आवाज़ में चंद नगमों का आनंद ले रहे थे। सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की आवाज़ में ये नगमा।

अभी आप अशोक खोसला की आवाज़ में ये नगमा सुन रहे थे। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं बॉम्बे इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है चित्रा ने। महबूब के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए दो रास्ते। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में बोल आनंद बख्शी के हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का

0: सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का ये गीत बोल मजरों के हैं व धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत कुमार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रोटी।

और अब अंत में सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में जमाने को दिखाना है इस फिल्म का ये गीत। बोल मजरो सुल्तानपुरी के हैं, वधुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अमान अली बंगश का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। तो लीजिए सुनिए अमान अली बंगश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म रुस्तम से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की।

श्रोताओं, अभी आप रुस्तम फिल्म का एक गीत सुन रहे थे। आवाजें थी अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने। श्रोताओं, का कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म शापित से। गायक कलाकार हैं आदित्य नारायण और सुजेन डिमेलो। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया चिरंतन भट्ट ने।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म सनम रे का एक गीत। आवाजें दी हैं मिथुन और अरिजीत सिंह ने। गीत व संगीत मिथुन के हैं।

और अब प्रस्तुत है कौसर मुनीर की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया अमित त्रिवेदी ने। फिल्म इश्क जादे के इस गीत को स्वर दिया जावेद अली और श्रेया घोषाल ने।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और अलका याग्निक की आवाजों में 36 चाइना टाउन फिल्म का एक गीत। हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा समीर ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना केकी और पलक मुच्छल की आवाज़ों में एक था टाइगर फिल्म का गीत, बोल अनविता दत्त के थे व धुन तैयार की थी सोहेल सेन ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं केकी और श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज़ों में जब तक है जान फिल्म का गीत। गुलजार की लिखी इस गीत को संगीत से सजाया ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शफ़ाकत अमानत अली की आवाज़ में जन्नत 2 फिल्म का गीत। बोल सईद कादरी के हैं व धुन तैयार की प्रीतम।

और अब गौरव दगांवकर के संगीत निर्देशन में तैयार शिरीष कुंदर का लिखा है गीत, फिल्म है जोकर। आवाजें हैं सुनीति चौहान और आदर्श शिंदे की।

श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए बर्फी फिल्म का एक गीत। आवाज़ है निखिल पॉल जॉर्ज की। आशीष पंडित के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया प्रीतम ने।

उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजों में लीजिए सुनिए अग्निपथ फिल्म का एक गीत। अजय अतुल के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने।

राहत फतेह अली खान की गाय फिल्म ब्लड मनी का एक गीत अभी आप सुन रहे थे। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था गीत

राहत फतेह अली खान की गाय फिल्म डेड मनी का एक गीत अभी आप सुन रहे थे। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था गीत गांगुली ने। श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत का तचल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1367वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी

सुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई, रेल चली,

0: छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
1: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
2: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
1: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
2: हाँ, अब बन गई रेल।
0: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
1: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
2: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
3: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
1: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
3: चलो रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ, इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
1: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
3: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
1: अच्छा
3: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
2: दादाजी मैंने देखी है।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
3: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
1: अरे वाह,
3: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
1: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
3: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
4: अरे दादाजी स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
3: अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
4: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
3: बैठो बैठो जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो।
2: रानी जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
3: हाँ हाँ उतरो बेटी।
5: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
1: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
3: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
3: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
2: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
3: हाँ।

0: बच्चों देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा।
1: अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल दी। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
3: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक

बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे गांव गांव और शहर शहर तक वो

को सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो सब

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1367वीं कड़ी सुन रहे थे।

श्रोताओं, इस समय दिन के 11:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सलामी से। गायिका हैं अलका याग्निक। इस गीत को लिखा सुरेंद्र साथी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अलीशा चिनाय और जुबीन गर्ग की आवाज़ों में क्रिश फिल्म का गीत बोल समीर के थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मदन पाल की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने। फिल्म है उलझन, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

साजन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, ये है फिल्म फिर हेरा फेरी का एक गीत। गायक व संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, बोल समीर के हैं।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ലും FM 100 ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली

0: points to 75,181, while the Nifty declined 75 points to 23,560 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:11 हुए हैं। अब पेश खिदमत है कार्यक्रम महफिल कव्वाली। आज इस कार्यक्रम के तहत कव्वाल हैं अब्दुल रबचौस, रानी रूपलता और छोटे यूसुफ। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए रानी रूपलता को।

फुरकत, आंखों में लरजती है तस्वीर गमे उल्फत, आ तुझसे लिपट जाऊं आई नए खुशकिस्मती, वो तेरे करीब आकर शर्मा

श्रोताओं, महफिल कव्वाली कार्यक्रम के तहत अभी आप अब्दुल रब चौस, रानी रूपलता और छोटे यूसुफ की आवाज़ों में चंद कव्वालियों का आनंद ले रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर की 1:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ श्री विद्या। श्रोताओं, गीतों की दुनिया भी कितनी खूबसूरत होती है। कभी कोई गीत पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं तो कभी किसी अपने तक की दिल की बात पहुंचा देते हैं, और जब गीत आपकी पसंद का हो तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। तो श्रोताओं, अपने पसंद के गीत की बोल, फिल्म का नाम और अपना पता लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 9474234000। तो चलिए श्रोताओं, आज का ये सफर शुरू करते हैं आपकी पसंद के पहले पैगाम के साथ। श्रोताओं, आज की पहली फरमाइश है साथी फिल्म के इस गीत के लिए। भेजने वाले श्रोतागण हैं सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से, शेख जिया उर रहमान डिलारी रोड मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से, शेख अता उर रहमान और हबीबुर रहमान। ये सारे सुनना चाहते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्ते, गोइंकास्ट लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।
0: श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं पिंगावाला चौक गौरैया जालंधर से संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भरत और कमल साहनी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, ईशान और पूजा परिहार।

श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए जीत फिल्म का गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोतागण हैं दंतरेंगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा, और असम से हितेंद्र दास, श्री विजयपुरम से पूर्णिमा और आदित्य प्रकाश, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगीशपुरी ट्विंकल, डिम्पल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें आई है जिला नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधुसागर और रत्ना और सतना। मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये सारे सुनना चाहते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत।

खबर हो। श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हमें आई है पद्मा टॉकीज मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, प्रखर, पल्लवी, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रिया, प्रियम, वामिका और वाणी तांधिका, और ये सब सुनना चाहते हैं मधुमती फिल्म का ये गीत।

तो श्रोताओं, गीत और आपकी पसंद से सजा आज का ये सफर यहीं तक। उम्मीद है आपके नाम फिल्मी पैगाम के माध्यम से आज की हमारी ये प्रस्तुति आपके दिल को छू गई होगी। आप भी किसी प्रियजन के नाम एक खूबसूरत फिल्मी पैगाम भेजना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना पता हमें व्हाट्सएप कीजिए 9474234000 पर। फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात में नए पैगामों और आपकी मनपसंद धुनों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम। और दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अधिकतर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीक्षानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे

0: बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
1: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के

0: चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर।

0: 100.9 आपका हम सफर।
1: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

नमस्कार श्रोताओं, 100.9 विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम से प्रसारित हेलो डियर फ्रेंड्स में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं श्री विद्या। श्रोताओं, हर बार की तरह आज भी हमारी कोशिश है कि कॉल के जरिए सीधे आप तक पहुंचे और आपसे करे कुछ बातें। और आज की हमारी श्रोताओं की सूची तैयार हो चुकी है। इसी सूची में शामिल श्रोताओं को हम फ़ोन करेंगे और करेंगे उनसे बातें। अगर आप भी हमारे साथ फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो अपना नाम और पता लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है 9474234000। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो हेलो हेलो डियर फ्रेंड, हेलो सुशील जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? श्रोताओं, लगता है ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर हम सुशील जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक सुनिए ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हाँ मैडम,
0: हेलो सलमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। आप श्री विजयपुरम की रहने वाली हैं। श्री विजयपुरम में कहाँ रहती हैं आप?
1: जंगी घाट में रहती मैडम
0: जी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीवाना पिक्चर का सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं है लगाना मैडम
0: जी। अच्छा गाती भी हैं लगता, और एक दो लाइन गा दीजिए।
1: नहीं नहीं मैडम, नहीं गाती नहीं
0: जी। जी जी, आप लंबा लाइन में रहती हैं, क्या करती हैं सलमान जी आप?
1: मैडम चलिए, घर पे रहती है, घर का काम, पेड़ है, पेड़ लगाना, पौधा लगाना बहुत अच्छा लगता है सब मेरे को।
0: तो अभी तक कितने पौधे हैं आपके पास? आपका फेवरेट पौधा कौन सा है उनमें से?
1: हमको ज़्यादा मैडम कागज़ फूल अच्छा लगता है।
0: तो उनमें से कितने रंगों वाला फूल है आपके पास अभी?
1: दो ही है मैडम, अभी जाना है सोचता काफ़ी बगीचा लेके आएंगे।
0: अच्छा, तो सारे पौधे आप कॉफ़ी बगीचा से लेके आती है, वहाँ के जो फार्म है वहाँ से? जी जी जी। आप दोस्तों से भी ले सकती है अगर किसी के पास है तो?
1: जी हाँ, लेते हैं, उनसे भी लेती है।
0: तो सलमा जी, ये गाना किन के साथ सुनना चाहती हैं आप?
1: सबसे पहले तो आप हैं।
0: धन्यवाद।
1: गुल नसीम बेगम, माजदा बेगम
0: जी
1: और नादिरा बेगम
0: जी, ये सारे कौन हैं आपके फ्रेंड्स हैं?
1: जी हाँ मैडम।
0: तो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं क्या? जी
1: एक मेरी बहन है, एक बाकी फ्रेंड है।
0: जी जी, उम्मीद करते हैं इस वक्त तो रेडियो सुन रहे होंगे।
1: जी जी
0: जी, तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का दीवाना फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, हमारी बात हो रही है अमल जी से। अमल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: जी, मैं अमल बात कर रहा हूँ और मैं रहने वाले हैं रंगापाड़ा सोनीतपुर असम में।
0: जी, रंगापाड़ा
1: सोनीतपुर असम।
0: जी जी, ये नाम कुछ अलग है, इस जगह का नाम कैसे पड़ा रंगापाड़ा?
1: हाँ, हमारा शहर का नाम है रंगापाड़ा
0: जी
1: और डिस्ट्रिक्ट है सोनीतपुर।
0: जी जी जी, तो अमल जी सबसे पहले गाना बता दीजिए।
1: गाना इंग्लिश बाबू डीसी में फिल्म का गाना होगा, दीवाना मैं तेरा दीवाना।
0: जी,
1: और मैं इस गाने को कुछ मित्रों को भी याद करना चाहूँगा।
0: जी बताइए अपने मित्रों के नाम।
1: हाँ, सबसे पहले भाई कौन मुंडा, विमल बसमतारी और गगेरा भा, संजय मुंडा, रमेश पत्रो और लाकी, रोनू पत्रो और देवाशीष हजरिका, सुनीता बसमतारी और त्रिपुरा से है अविनाश तेली और आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ और तानुश्री है, राकेश, शिवा लोहार और भगवान सिंह वर्मा, रमेश प्रजापति और लखिंद्र वर्मा और हमारे बहुत सारे
0: दोस्त हैं। अमल जी, आप अभी जितने लोगों के नाम आपने बताए हैं ना मित्रों में। हेलो अमल जी, लगता है अमल जी से संपर्क टूट चुका है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अमल जी की पसंद पर ये गाना।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, हमारी बात हो रही है केशव जी से।
1: जी मैम, मैं केशव प्रजापति दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं केशव जी?
1: मैम बढ़िया हैं, तो आप बताइए।
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा संबंध और गाने के बोल रही हैं अंधेरे में जो बैठे हैं।
0: जी जी सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। केशव जी कुछ अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैम मेरा गांधीनगर में शॉप है और वहीं पे घर है, तो वहीं होलसेल की मार्केट है, वहीं पे मैम अपनी काम करते हैं।
0: जी जी किस चीज़ का बिजनेस है?
1: लेडीज सूट का काम है मैम हमारे पे, लहंगे वहंगे जो होते हैं ना।
0: जी जी
1: वो चलता है मैम हमारे पास। अब तो सीजन आ गया मैम शादियों का।
0: हाँ हाँ अभी शादियों का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, अब तो बहुत सेल होने वाली है।
1: हाँ जी
0: जी तो आप कब से जुड़े हैं इस क्षेत्र में?
1: ये तो मैम शुरू से यहीं पे रहते हैं, दिल्ली में ही पैदाइश है हमारे।
0: जी जी तो आपने अपनी कौन सी उम्र में आपने शुरू किया है?
1: मैंने तो मैम 7-8 साल हो गए मेरे को।
0: जी जी तो
1: जी,
0: आप
1: पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैम मैंने फिर ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना।
0: अच्छा, तो आप अपनी पसंद से आए कि जो आपके पेरेंट्स करते थे तो आपको फिर बाद में करना पड़ा?
1: नहीं नहीं पेरेंट्स का तो मैम अलग अलग काम था
0: जी,
1: अपनी पसंद से मैम।
0: अच्छा आपने अपनी पसंद से शुरू किया है
1: जी।
0: तो आप आपको अच्छा लगता है ये काम?
1: हाँ जी हाँ जी मैम
0: जी जी तो ऐसे और आपकी अच्छी बिजनेस हो। अभी त्योहार आ रहे हैं और
1: जी।
0: और आपने बताया शादियों का भी सीज़न है, तो
1: जी
0: जी जी और किन के साथ सुनना चाहते हैं ये गीत?
1: मैम जैसे मेरे फादर हैं धर्मवीर जी, मेरा भाई है नितिन कुमार, और कुछ फादर के से दोस्त और मैम है जैसे मोनिका मैम है, पूर्णिमा जी है, सप्तमी, शिप्रा जी, लीली जी, बुलतीदास जी, संगीता जी, तनुश्री जी,
0: जी जी
1: और जैसे लोकेंद्र वर्मा अंकल है, प्रसाद अंकल है, पुष्प गुप्ता अंकल है,
0: जी
1: मकर अंकल है, सभी के साथ है, गोल्डी लोकेंद्र जितने भी है ना, लतीफति
0: जी जी जी जी
1: अंकल, और सबसे पहले आपके लिए भी मैम
0: जी।
1: और मैम जैसे फ्राइडे को
0: आपने बताया धर्मवीर जी आपके पापा।

0: हैं तो वो तो रेगुलर कॉलर हैं और
1: मैम।
0: जी जी जी नियमित श्रोता हैं हमारे।
1: जी जैसे मैम फ्राइडे को दिल्ली में मैम मोदी जी आएंगे, अभी एक सम्मेलन होने वाला है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो यहाँ पे भी काफी इनवाइटेड हैं, तो आप भी अगर आएंगे तो अच्छे लगे मैम।
0: जी जरूर आने की कोशिश करेंगे। अब केशव जी
1: जी
0: आपको आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।
1: जी मैम। और ये मैम एक ये गाना इसलिए भी है, जैसे मेरी मदर है ना, इस गाने पे थोड़ा रोती भी है, इस बारे में हमें चला है वाला।
0: अच्छा तो कुछ
1: सुनने में अच्छा
0: भावनात्मक
1: लगता है गाना
0: जुड़ाव भी
1: वाला।
0: है इस गाने से। जी जी तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद
1: जी।
0: का
1: और
0: गीत।
1: मैम मेरे जो मामा है ना वो आपके वहीं पे, उनकी पोस्ट है SGM में वहाँ पे।
0: केशव जी गाना प्ले हो चुका है।
1: जी जी ओके थैंक यू।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो डियर फ्रेंड,
2: प्यारे मैम को प्यार भरा गुड आफ्टरनून।
1: आपको भी प्यार भरा गुड आफ्टरनून। तनिश्री कैसी हैं आप?
2: मैम मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मैं श्रोताओं के लिए परिचय मेरा देती हूँ। मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
1: तनुश्री और बताइए अपने बारे में, शास्त्रीय संगीत कैसा चल रहा है आपका?
2: जी मैम बहुत अच्छा चल रहा है और इस बात की भी खुशी है कि आपने मेरा शास्त्रीय संगीत जो मैं सीखती हूँ आपने याद रखा।
1: जी आप इतनी प्यारी हैं, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, हम कैसे भूल सकते हैं।
2: थैंक यू मैम।
1: और आज क्या सुनने को मिलेगा हमें?
2: जी मैम मैं जो मैं फरमाइश कर बताने वाली हूँ ना वही मैं थोड़ा सा गुनगुना कर बताती हूँ।
1: जी गुनगुना दीजिए, अच्छा लगेगा हमें।
2: जी फिल्म का नाम है तेरे नाम और गाने के बोल है तुम।

0: मैम
1: जी। तनुश्री, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत ही अच्छे से गाया आपने, तो सुनवाएं आपको आपकी पसंद का गीत।
0: मैम मैं दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर।
0: पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी है, अविनाश जी है, राकेश जी शिमला से, गंगाधर सावन को जी, रमेश प्रजापति जी है, राम बाबू शर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, पुष्करना शर्मा जी है, पंचीराम शर्मा जी है, गोल्डी जी है, आसाम से भाई है अमोल भट्टाचार्य, और महाराष्ट्र से दीदी है दीपाली दीदी, और लक्ष्मण दो सभी श्रोताओं के लिए
1: जी। आप सभी मिलकर सुनिए ये प्यारा सा गीत, फिल्म है तेरे नाम।

0: हॅलो डिअर फ्रेंड.
1: हा मॅडम, शिटफाट अमरावती महाराष्ट्र बात
0: जी. मुकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. जी बहुत देर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था. तो सबसे पहले बता दीजिए गाना कौन सा है आज के लिए.
1: मुझे हीरा पन्ना मुझसे रहना होना.
0: जी जी.
1: हाँ, हीरा की तमन्ना है, हीरा की तमन्ना है.
0: जी, तो सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गाना. मुकेश जी, काम कैसे चल रहा है आपका?
1: बस बढ़िया चल रहा है, बारिश हो रही.
0: जी, आज कहाँ आपका काम कहाँ पे था आज?
1: अकोले में काम कर रहा हूँ.
0: जी जी.
1: अकोला महाराष्ट्र.
0: जी, आपने क्या कहा? अपोलो? अपोलो में?
1: हाँ, अकोला.
0: अकोला.
1: हाँ.
0: तो ये आपके घर से कितनी दूर है? दूर है या पास में है?
1: दूर है मैडम, 10 किलोमीटर.
0: तो कैसे जाना आना होता है आपका?
1: टू व्हीलर है मैडम, आना जाना.
0: तो अभी कहाँ, इस वक्त कहाँ हैं आप? वापस घर आ गए?
1: नहीं मैडम, शादी हुआ, मेरा प्रोग्राम सुनते
0: हुए. अच्छा, तो ये आपका लंच टाइम है?
1: हाँ, लंच टाइम मोबाइल से सुनते रहते.
0: तो कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया लगता है.
0: और दिन के इस समय में तो आप सुन पाते हैं, बाकी कौन सा समय होता है जो आप रेडियो के कार्यक्रम सुन पाते हैं?
1: मैं सवेरे ही यार मेरा आपका चैनल सुनते रहता हूं.
0: और आपके घर में और कौन है जो जिनको रेडियो सुनना पसंद है?
1: मेरी माता जी, मेरी पत्नी है. भाई भी है.
0: जी, बहुत
1: खुशी रहती है.
0: जी,
1: मेरा फोन लगता है.
0: अच्छा, जब आपको कॉल लगता है तो बहुत खुश होते हैं. तो इस वक्त क्या सुन रहे हैं आपको परिवार वाले आपके?
1: अभी परिवार वाले नहीं मैडम, अभी काम पर गए दूसरे.
0: अच्छा अच्छा.
1: अभी काम पे मैडम.
0: अच्छा, आप काम पे हैं, ठीक है. जी जी जी. तो मुकेश जी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गाना, हीरा पन्ना फिल्म से है ये. और ये गाना किन के साथ सुनना चाहते हैं?
1: ये मेरे दोस्त है अवेश भाई. रियान खान. और मेरे भैया है राजकुमार के साथ.
0: जी, तो सुनिए फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत.
1: जी, धन्यवाद.

हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। हमारी बात हो रही है अविनाश जी से। जी ज़्यादा समय नहीं है, गाना बता दीजिए, जल्दी से गाना सुनवा देते हैं आपको। जी आप बोलते रहिए, मैं गाना प्ले कर चुकी हूँ। जी सब मिलकर सुनिए ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों आज की हेलो डियर फ्रेंड में इतना ही। आज जिन श्रोताओं से हमारी बातचीत हुई उनके साथ की ये मुलाकात वाकई खास रही, और अगर आज आपसे बात नहीं हो पाई तो बिल्कुल निराश मत होइए। अगले हेलो डियर फ्रेंड्स में हम अपनी सूची में शामिल किसी नए श्रोता को ज़रूर कॉल करेंगे। हो सकता है अगली बार स्टूडियो से आने वाली फ़ोन की घंटी आपके लिए हो। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं श्री विद्या। दोस्तों, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के बाद ही मिले। कभी कभी एक कप चाय, किसी अपने का फोन, पुरानी यादों की एक तस्वीर, रास्ते में किसी बच्चे की मासूम हंसी या फिर अपना पसंदीदा गीत सुन लेना भी दिल को खुश कर देता है। जिंदगी का हिसाब अगर हर पल की परेशानियों से लगाया जाए तो शायद खुशियां कम लगेंगी, लेकिन अगर छोटी छोटी अच्छी बात को गिनना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि जिंदगी में मुस्कुराने की वजहें बहुत हैं। तो आज के सफर में हम बात करेंगे मुस्कुराहट की, हंसी की और उन छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। क्योंकि खुशी का सबसे सुंदर रूप यही है कि वो बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी सोच के साथ कि अगर हमारी एक मुस्कान

क्या खूबसूरत संदेश है दोस्तों। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, कभी किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद कह देना और कभी मुश्किल समय में बस उसके साथ खड़े रहने में भी बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिए दोस्तों, हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। और जब जिंदगी में कोई अपना हमारी मुस्कान की वजह बन जाए तो खुशियाँ और भी खास लगने लगती है।

श्रोताओं, मुस्कुराने की वजह कोई इंसान हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, लेकिन एक बात और है, खुद को भी अपनी मुस्कुराहट की वजह बनने दीजिए। दूसरों से खुशियाँ मिले ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना ये कला हमें खुद सीखनी पड़ती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मंजी रोखर हमांग इंगजे तका इंगम मीडियम वे 438.6 मीटर हेक इंगम 684 किलोहर्ट्स लेकती हांग इन रमांगलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग
2: जर्म्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 ngampanam me hek story me ne in kah kame aiya tarokhare creators ral tarik akungi kun panam re andaman nikobar islands asa ngam platform tahale lenga ne in ngam terms of india challenge 2026 chuki hamuk tamine te jol kangin tane hangre tindri kenre ai akune kun panam re hek imine te jol kangin tradition hi holre the up the ju the story yip local aku panamre anu ada hamak tu dahi asa nup content tasa nup culture heritage tourism potential tradition cuisine arts hek inspiring local stories indre imine district si nup video upload lahi naho heng net hek lui minutes in lahen natrungam my waves platform ingam waves ott platforms Julanga angam kine tere takhi ay entry ta registration re hek enrollment re indre ay ingam my waves section ngam waves ott platform ay selipta luyanai alahango september chinge tanet kenera na ta full mene ini hek tanengen yipta select ngare wahi min tanup upload lare video asa mene levels u ingam district level Natani anai kain taningin ngaj ingam state level na net lag taningin ngaj ingam national level natani lag taningin min asup pakete hek katahi register tarengaj ingam my

जाहु उये चिन मिन लोहतेन तरो तेन रे हकेन मे इहे तकु अमरिंग मिन ये तरे इंजो रो आलांग दिन के एटमन के प्रियल।

0: Digaknya mahuli asa pehan unta hemen hang hitin ke ingi program wane e ika hemen hitin ke asa ngam terhayen berita ke berita hi telek tan sin ngak hang ngatel ngahang tangamu hek in re chang rong itka sada ita fan ke ro tala harap salam yan nge
1: श्रोताओ अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम लम्हे की छठवीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं। इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलना।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद खाने की इच्छा होती है और फिर हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में हम भूख मिटाने के चक्कर में हम अनहेल्दी फूड लेने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का वह ईंधन है जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है, विभिन्न कार्यों का कर

के लिए मस्तिष्क और स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्थी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता न किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेही नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है। वह घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला, सबके लिए नाश्ता जरूरी है। नाश्ता अधिक फैट बर्न करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाश्ता अगर प्रोटीन युक्त और फैट फ्री किया जाए तो दिन में अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताज़े और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है, जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थात लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन के कैलोरी जरूरत का 25% होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं। दलिया या खिचड़ी, रोटी या सब्जी, इडली, पोहा, डोसा आदि, पराठा, दही आदि। बच्चों को उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हेल्थी ब्रेकफास्ट दे। वेल डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दिस इज चेतन सेइंग बाय फॉर नाउ। आई विल गेट बैक टू यू विथ मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप लम्हे कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम सुनिए शाम 5:00, 5:30 पर बंगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में बातचीत होगी कृषि विभाग के श्री कन्हैयालाल प्रसाद से। बातचीत का विषय होगा नारियल के बागान में मिश्रित खेती। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे का समय रहेगा संध्या 6:30। 7:15 पर सुनिए मौसम जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया का समय होगा 7:20। 7:30 पर युववाणी के तहत कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चर्चा आप सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत का समय होगा रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरवगान। रात्रि 10:00 कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स में जानकारी का विषय रहेगा मिश्रित कृषि प्रणाली। 6:10 पर आप सुनेंगे जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम में 6:15 पर शीर्षक होगा साया। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस गान। 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

कर 30 मिनट पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत पर्यावरण कार्यक्रम में, जिसमें विषय होगा जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा, डॉक्टर लालाजी सी सिंह से भेंटवार्ता होगी और आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी ले पाएंगे। आठ बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और वत्सला मेहरा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने के समय होगा सुबह 9 बजे। 9 बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत में एम बाला मुरली कृष्णन का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन पाएंगे। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय होगा 10 बजे। 11 बजे आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1369वीं कड़ी सुन पाएंगे। चित्रगीत का समय होगा दिन के 11 बजकर 30 मिनट। तेलुगु कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। 12 बजकर 30 मिनट पर मलयालम कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 1 बजकर 10 मिनट पर सुगम संगीत में प्रद्युमन शर्मा को आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय 1 बजकर 30 मिनट। दोपहर बाद 2 बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी, तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3 बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम होगा यू ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे 4 बजकर 30 मिनट पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8 बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9 बजकर 15 मिनट पर स्पॉटलाइट, 9 बजकर 30 मिनट पर कंट्री नाइट वाइट, 9 बजकर 45 मिनट पर इनसाइट्स होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz विविध भारती मुंबई से कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 4 बजकर 45 मिनट हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं दीवाना फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है कुमार सानू और साधना सरगम। गीत को लिखा है समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को

अनुराधा पौड़वाल और अभिजीत की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा एवं नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। गीत फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं।

मिलिंद सागर के संगीत निर्देशन में तैयार आइए अब सुनते हैं दो दिलों का संगम फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिया है अनुराधा पौरवाल और लिखा है फैज अनवर ने।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

0: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, शुभ सन्ध्या। আমার সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের সান্ধ্য বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा

जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हर दिन की शुरुआत एक नए विचार के साथ करें, क्योंकि क्रोध, द्वेष और मोह आपको अंधकार की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने मन को जीत लेते हो तो आप पूरे संसार को जीत सकते हो। सच्चा सुख ना तो धन में है ना प्रसिद्धि में, बल्कि उस शांति में है जो तब मिलती है जब आप स्वयं को जान लेते हैं। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, नवजात बछड़ों या बछिया को कितने दिनों तक खीस पिलाया जाना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर सुने, नवजात बछड़ों या बछिया को कितने दिनों तक खीस पिलाया जाना चाहिए। साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: किसान साथियों, आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कृषि विभाग के श्री कन्हैया लाल प्रसाद जी से, और इनसे बातचीत का विषय है नारियल के बागान में मिश्रित खेती।
1: कन्हैया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: कन्हैया जी। जैसे कि आज की हमारी चर्चा का विषय है नारियल के बागान में जो मिश्रित फसलें हम ले सकते हैं इस संदर्भ में, तो इससे पहले कि हम मुख्य मुद्दे की ओर बढ़े, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नारियल की फसल है और इसमें जो मिश्रित खेती होती है, इसकी संभावनाएं हमारे इन द्वीपों में क्या है या इसकी स्थिति क्या है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: नारियल जो है एक ऐसा फसल है जिससे हम चाहें तो एक ही छोटे से क्षेत्र से हम काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि बागान से अधिक प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई निवेश एवं प्रति इकाई समय में अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो। मिश्रित फसल

0: एक ऐसा फसल है जिससे हम चाहें तो एक ही छोटे से क्षेत्र से हम काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि बागान से अधिक प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई निवेश एवं प्रति इकाई समय में अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो। मिश्रित फसलों का चुनाव करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चयनित फसल का कुप्रभाव मुख्य फसल यानी हमारे नारियल के फलन पर ना पड़े। और हम जानते हैं कि हमारे इन द्वीपों की नारियल उत्पादक क्षमता जो है बहुत कम है। अगर हम कहें तो 20 से 30 फल ही प्रति वृक्ष प्राप्त होता है, जो कि हमारी आवश्यक उत्पादक क्षमता से बहुत ही कम है। ये करीब करीब 80 से 100 फल प्रति वृक्ष होना चाहिए। तो अगर इस बात को भी हम लें तब हमारा इन मिश्रित फसलों का और बहुस्तरीय फसलों का की उपयोगिता इस नारियल के बागान में बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर चूंकि नारियल की उत्पादकता ऐसे ही बहुत कम है, तो इसके बीच में अगर हम कुछ और फसलें लें तो जो आय है किसान की वो बढ़ सकती है। कन्हैया जी, जो नारियल की एकल फसल करते हैं, मतलब सिर्फ नारियल की खेती होती है एक बागान में, तो ऐसे में जो संसाधन हैं उनका उपयोग किस तरह से होता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो नारियल के एकल कृषि में सिर्फ हम जानते हैं कि 7.5 मीटर और 7.5 मीटर की दूरी में नारियल के वृक्ष लगाए जाते हैं, तो इसमें एक नारियल का वृक्ष जो है करीब करीब 55 से 56 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका एक नारियल पेड़ के जड़ों का फैलाव 2 मीटर तक होता है, तो इस वजह से सिर्फ एक नारियल को करीब करीब 12.5 स्क्वायर मीटर जमीन ही चाहिए, तो बाकी जो है हिस्सा जमीन का बच जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि करीब करीब एक नारियल का वृक्ष जो है 25% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है,
1: जितना उसका पास होता है उसमें से सिर्फ 25% का ही इस्तेमाल होता है जी।
0: इसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, वो उसमें भी हम देखते हैं कि 45 से 50% प्रकाश जो है वेस्ट हो जाता है। तो इन दोनों भूमि और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल हम इन बहुस्तरीय और मिश्रित फसल के फसलों द्वारा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: यानी भरपूर इस्तेमाल हो, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है उसका पूरा इस्तेमाल हो सकता है। कन्हैया जी, अगर मिश्रित खेती नारियल के साथ कोई किसान करना चाहता है तो उसे किन किन बातों पर ध्यान देना होगा फसलों को चुनते समय और इस तरह की बातों को करते समय?
0: सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो नमी है उसके लिए भी इन फसलों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। हमारे द्वीपों में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छी वर्षा जो है करीब 3000 मिलीमीटर होती है, और इसके लिए सिर्फ 1500 मिलीमीटर ही काफ़ी है
1: नारियल की खेती का।
0: तो हम मिश्रित अगर करते हैं इन फसलों से तो नमी का भरपूर उपयोग इन फसलों द्वारा हो जाएगा। अनारस और चारा वाली फसलें, मसाला वाली फसलें, इन सबों का लाभ जो है उठा सकते हैं।
1: अच्छा, यानी इन फसलों में नमी के लिए कोई प्रतिस्पर्धा आपस में नहीं होती है।
0: और एक बात और है कि पोषक तत्व के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उनके आपस में कंपटीशन ना हो। तो खासकर कंपटीशन जो है नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों के लिए ही कंपटीशन देखा गया है इन फसलों के बीच।
1: अच्छा, तो कहने का तात्पर्य है कि जो पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, तो फसलों का चुनाव इन बातों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए कि नारियल के जो हमारी जो नारियल का प्रमुख फसल है उसमें इस तरह की प्रतिस्पर्धा से कोई नुकसान ना हो। कन्हैया जी, अगर किसान मिश्रित फसल लेना चाहता है तो कुछ पद्धतियाँ होंगी जिसका कि वो इस्तेमाल कर सकता है नारियल की फसल के साथ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: तो देखिए, हमारे यहाँ दो तरह की ज़मीन जो है उपलब्ध है इन फसलों के लिए। जैसे कि अगर हम पहाड़ी ज़मीन को लें तो पहाड़ी ज़मीन के लिए नारियल के साथ में केले का मिश्रण शुरुआत के 3 वर्षों तक, उसके बाद में गोलमिर्च का मिश्रण किया जा सकता है, अदरक और हल्दी का भी मिश्रण किया जा सकता है, इसी तरह लौंग, जायफल, दालचीनी इन फसलों का भी मिश्रण जो है किया जा सकता है। और हरी खाद के लिए हम जानते हैं सुबाबुल बहुत ही एक अच्छा वृक्ष है, तो इसे भी हम ले सकते हैं इसके लिए। और इसके साथ साथ दूसरी सब्जियां जैसे मिर्च को भी इसमें मिश्रण किया जा सकता है, और जड़ वाली फसलें जैसे कि टैपियोका हो गया, जमीकंद हो गया, इन फसलों का भी मिश्रण किया जा सकता है पहाड़ी ज़मीन में बहुत ही अच्छे ढंग से। और समतल ज़मीन के लिए अगर

0: हम आते हैं तो यहाँ पर भी करीब करीब वैसे ही है, जैसे कि इसमें भी नारियल, केला और जड़ वाली फसलें, गोल मिर्च, और इसके साथ एक और चीज़ है, ये नारियल के साथ में पान पत्ते का भी खेती जो है किया जा सकता है।
1: अच्छा हाँ
0: शुरुआत के दिनों में जब नारियल का वृक्ष 8 से 10 साल के अंदर हो, भीतर हो, तब जो है इसमें अनारस, केला, जमीकंद, टैपियोका, मूंगफली, मिर्च और शकरकंद, अदरक, हल्दी, इन सारी फसलों का मिश्रण बहुत
1: हो
0: ही
1: सकता
0: अच्छे
1: है।
0: ढंग से किया जा सकता है। इसके बाद हम जब ये नारियल का वृक्ष 10 से 20 वर्ष का हो जाए, तब घुइयाँ, वो जो कोलोकेसिया कहते हैं जिसे, और कुछ केले के जो पेड़ होते हैं जो सेड लविंग हो,
1: अच्छा, जिसको
0: जिनमें
1: छाया में जो हो
0: छाया
1: सकता
0: में,
1: है।
0: जिनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता ना हो, ऐसे भी बहुत सारी जातियाँ, प्रजातियाँ हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जब हमारा नारियल का वृक्ष 20 वर्ष का हो जाए, उसके बाद में हम परिनल क्रॉप्स जैसे कि
1: बहुवर्षीय फसलें
0: बहुवर्षीय
1: जो
0: फसलें, इसमें लौंग, जायफल, दालचीनी और काली मिर्च को हम सुचारू रूप से जो है
1: ले
0: इनका
1: सकते हैं।
0: मिश्रण कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कोई किसान भाई अगर मिक्स्ड फार्मिंग में, मतलब जानवरों की चाहें तो जानवरों का कोई का भी पालन अगर इसमें करना चाहें नारियल के बगीचे के साथ, तो वो उसमें फॉडर, मतलब चारे
1: चारा
0: वाली
1: वाली
0: फसलें जो होती हैं, उनका भी बहुत ही अच्छे से नारियल के साथ में मिश्रण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हाइब्रिड नेपियर, कुछ लेग्यूमिनस दाल वाली जो फसलें होती हैं वो हो गया, फिर हाइब्रिड बाजरा, इनको लगाकर जो है चारे का, इस चारे का इस्तेमाल जो है जानवर के लिए वो कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसके साथ साथ अगर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में आयुर्वेद बहुत ही आगे आ रहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो मेडिसिनल प्लांट,
1: औषधीय
0: मतलब
1: पौधों का।
0: औषधीय पौधों का भी मिश्रण इसमें बहुत ही भली भांति किया जा सकता है। और इन द्वीपों के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि एलोवेरा इस नारियल के बगीचे में बहुत ही अच्छे से आ सकता है, फिर ये पिपली है, वेटिवर है, एरारोट, ये सारे औषधीय पौधे बहुत ही अच्छी प्रकार से उत्पादन में लाए जा सकते हैं नारियल के साथ।
1: जी अच्छा कन्हैया जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो नारियल के साथ मिश्रित खेती या बहुस्तरीय खेती जो किसान भाई करते हैं, तो अगर हम फायदे गिनाना चाहें कि किसानों को इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, तब आप क्या बताएंगे?
0: नारियल के साथ में दूसरी फसलों के मिश्रण से हम जानते हैं कि किसान को एक नहीं कई फायदे जो है होते हैं। सबसे पहला फायदा अगर हम देखें तो रोज़गार। अगर कोई किसान सिर्फ अगर 1 हेक्टेयर में नारियल का खेती अगर कर रहा है, तो उसे 150 मैंडेस
1: श्रम दिवस जो
0: श्रम दिवस ही मिल पाते हैं प्रतिवर्ष। जबकि अगर ये हम मिश्रित करता है दूसरी फसलों के साथ, खासकर ये मल्टी टायर क्रॉपिंग के अगर लेता है, तो इसमें 360 मैंडेस जो है प्रतिवर्ष किसान को उपलब्ध हो जाता है, मतलब रोज़गार जो है
1: बढ़
0: बढ़
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है। और हम जानते हैं कि किसान मेहनत करता है तो उसे अधिक आय चाहिए। इसमें भी देखिए, अगर नारियल को गोल मिर्च और अनारस के साथ में अगर कोई किसान अगर मिश्रित करता है, तो उसे 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया तक जो है प्रतिवर्ष आज के दिन में
1: आय मिल जाती है।
0: आय आ जाता है। जबकि अगर सिर्फ वो नारियल की कृषि करे तो करीब करीब 50 से 60 हज़ार रुपया ही किसान जो है प्रतिवर्ष, वो भी तब जबकि 60 नारियल प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हो तब। तो इसके बाद और एक फायदा यह है कि नारियल की कीमतें गिर जाने पर किसान को दूसरी फसलों से जो है ज़्यादा फायदा होने के चांसेस, अवसर उसके पास में होते हैं।
1: अच्छा
0: इसके बाद अगर किसी वर्ष में मान लीजिए कि नारियल का उत्पादन ठीक से ना हो,
1: फलन ठीक ना हो।
0: फलन ठीक ना हो, या नारियल को कोई रोग लग जाए, तो उस समय में भी किसान को जो है सहारा देने वाली जो ये जो फसलें हैं मिश्रित की गई, उसे उसके बहुत काम आती हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जब ये फसलों का मिश्रण होता है तो इसमें कार्बनिक चक्र के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि जो बायोमास जो दूसरे फसल उगाई गई हैं, तो उनसे बहुत सारा उनके जो अवशेष होते हैं ये बगीचे में ये मिलकर जो है उसका उत्पादन क्षमता, और
1: अच्छा
0: जो क्षमता होती है उसके बहुत ही
1: जमीन की
0: बड़ा
1: बढ़
0: जमीन
1: जाती
0: की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ एक और फायदा ये भी है कि हमारे देश की जो कुल कृषि उत्पाद है
1: जी हाँ,
0: वह बढ़ जाता है, किसान
1: सही बात
0: की
1: है,
0: आमदनी और कुल कृषि का उत्पाद,
1: दोनों में
0: ये
1: बढ़ोतरी
0: दोनों में
1: होती
0: ही बढ़ोतरी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से
1: हो सकती
0: हो
1: है।
0: सकता है।
1: चलिए तो कन्हैया जी, आपकी बातों से ये साफ है कि अगर मिश्रित खेती नारियल के

0: खदान में कर रहे थे, एक और जहाँ किसान जो संसाधन है उसका पूरा इस्तेमाल कर
1: पूरा
0: लेता है,
1: इस्तेमाल कर
0: क्योंकि
1: लेता
0: आपने
1: है।
0: जैसे बताया कि अगर सिर्फ नारियल के वृक्ष अकेले हों तो ज़मीन और रोशनी दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बेकार चला
1: बेकार
0: जाता
1: चला
0: है,
1: जाता है।
0: अतिरिक्त आय मिल जाती है, कृषि उत्पादन भी बढ़ जाता
1: जी
0: है।
1: हाँ,
0: तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बातें हैं इन पर किसान ज़रूर गौर करेंगे, और अगर नारियल की एकल कृषि वो कर रहे हैं तो उसमें जो दूसरी फसलें हैं उनको भी वो ज़रूर लेंगे।
1: जी,
0: तो आज आप कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।

0: नारियल के बागान में मिश्रित खेती, इस विषय में हमें बता रहे थे श्री कन्हैयालाल प्रसाद, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: किसान साथियों, मौसम पलों में बदलते रहते हैं और इस मौसम के बदलाव के कारण खेती किसानी के कार्यों में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। तो वो क्या क्या बदलाव है, इस बारे में जानने के लिए आइए हम आपको सुनवाते हैं मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं। किसान साथियों, दक्षिण अंडमान में 7.0 से 12.0 मिलीमीटर तक हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 46.0 मिलीमीटर रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30.0 से 31.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26.0 से 27.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 88-89% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 73-77% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 17-23 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा हवा की दिशा मुख्यतः पश्चिम दक्षिण पश्चिम यानी कि 248 से 257 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान आकाश सामान्यतः बादल युक्त से घने बादलों से ढके रहने की संभावना है। किसानों को ये मौसम चेतावनी दी गई है कि 1-2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज चमक एवं आकाशीय बिजली की संभावना है। किसानों को मौसम चेतावनी के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह दी जाती है कि गरज चमक के साथ तेज हवाओं के कारण खड़ी फसलों के गिरने, युवा पौधों के झुकने या उखड़ने, फलों के गिरने तथा बागवानी फसलों को नुकसान होने के साथ साथ खेत में रखी कटी हुई उपज के खिसकने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किसानों को ये सामान्य सलाहकार दी जाती है कि द्वीप समूह में हल्की वर्षा होने की संभावना है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में ही कृषि कार्य करने तथा खेतों में जल भराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। वर्षा के दौरान अथवा वर्षा से ठीक पहले उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग न करें। आर्द्र मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसलों में कीट एवं रोग के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। कटाई की गई उपज एवं पशु आहार को स्वच्छ, शुष्क एवं हवादार स्थानों पर सुरक्षित रखें। भारी वर्षा एवं गरज चमक के दौरान पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप तथा आकाशीय बिजली की चेतावनी के लिए

0: दामिनी ऐप का उपयोग करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की वर्षा की संभावना है। वर्षा के दौरान उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग ना करें तथा फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। मौसम के अनुसार किसानों को ये कृषि सलाह दी जाती है कि हल्की वर्षा होने की संभावनाओं को देखते हुए चावल की फसल की महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्था को ध्यान में रखते हुए किसानों को खेत में 2-3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखने तथा आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। बालियां निकलने की प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से दे। हालांकि वर्षा से ठीक पहले अथवा वर्षा के दौरान नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। फसल में लीफ फोल्डर के प्रकोप की नियमित निगरानी करें तथा प्रकोप पाए जाने में नीम तेल 3-4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बागवानी करते समय पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति के अनुसार किसानों को अदरक एवं हल्दी की फसल में समय पर निराई गुड़ाई करने तथा खेत की स्थिति अनुकूल होने पर अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद पौधों को उचित सहारा प्रदान करने तथा प्रगन के समुचित विकास के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। प्रचलित हल्की वर्षा एवं उच्च आर्द्रता की स्थिति को देखते हुए किसानों को पशुशालाओं को स्वच्छ, सूखा एवं मक्खियों से मुक्त रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मक्खियों की सक्रियता तथा पशुओं के हम शोर के प्रसार को बढ़ावा दे सकती है। घावों को अच्छी तरह साफ कर उन पर नीम तेल या नीम आधारित मलहम लगाए ताकि मक्खियों के प्रकोप को रोका जा सके। हम शोर से प्रभावित पशुओं का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह से करें। हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए मछली पालन विशिष्ट सलाह दी जाती है कि किसानों को तालाब की मेड़ तथा पानी के प्रवेश एवं निकास संरचनाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मेड़ मजबूत एवं सुरक्षित रहे ताकि पानी के अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सके। जल की गुणवत्ता अनुकूल होने पर प्राकृतिक प्लवक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की घोल को थैलियों में भरकर तालाब में रखें। मछलियों की सक्रियता एवं जल की वर्तमान स्थिति के अनुसार आहार देना जारी रखें। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने, बड़े पेड़ों के उखड़ने तथा खड़ी बगान एवं बागवानी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। पेड़ों की गिरती शाखाओं से बिजली एवं संचार लाइनों को नुकसान हो सकता है। गर्म चमक के दौरान, जबकि कच्चे मकानों, झोपड़ियों एवं कमजोर चार दीवारी जैसी असुरक्षित संरचनाएं भी प्रभावित हो सकती है। गरज चमक के दौरान घर के अंदर रहे, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें। सुनिश्चित भवन में शरण ले और पेड़ों के नीचे शरण ना ले। कंक्रीट के फर्श या दीवारों, जल निकायों, बिजली के खंभों, ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों तथा धातु की वस्तुओं से दूर रहे। बिजली गिरने से उत्पन्न वोल्टेज के झटकों से बचाव के लिए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। किसान भाइयों, अभी आप मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं सुन रहे थे। कृषि
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो रील

0: डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्र स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: किसान साथियों, आइए अब हम कुछ चर्चा करेंगे किसान ड्रोन योजना के संदर्भ में।

भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और किसानों के समय व श्रम को बचाना है। इस योजना के तहत किसानों और कृषि संगठनों को ड्रोन खरीदने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है। किसानों, FPO यानी किसान उत्पादक संगठन और ग्रामीण उद्यमियों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 40% से लेकर 80% तक की सब्सिडी मिलती है। ड्रोन की मदद से खेतों में कीटनाशकों, नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे उर्वरकों का छिड़काव बहुत कम समय और पानी में समान रूप से किया जा सकता है। योजना के तहत किसानों और महिलाओं को ड्रोन संचालन के लिए मुफ्त या रियायत पर ट्रेनिंग और DGCA का लाइसेंस भी दिया जाता है। किसान ड्रोन में कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरा एक मानव रहित टैंक होता है। ड्रोन में लगभग 5 से 10 किलोग्राम की उच्च क्षमता मौजूद होती है। ड्रोन द्वारा सिर्फ 15 मिनट में करीब 1 एकड़ जमीन पर 5 से 10 किलोग्राम कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी, कम मेहनत में छिड़काव समान रूप से किया जाएगा। उनका उपयोग खेतों से सब्जियां, फल, मछली आदि को बाजारों तक ले जाने के लिए भी किया जाएगा। इन वस्तुओं की आपूर्ति कम से कम नुकसान के साथ सीधे बाजार में की जाएगी, जिसमें कम समय लगेगा। परिणाम स्वरूप किसानों और मछुआरों को अधिक लाभ होगा। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह एक नई बढ़त क्रांति की शुरुआत करेगा, क्योंकि उच्च क्षमता वाले ड्रोन का उपयोग सब्जियों, फलों, मछलियों को सीधे खेतों में बाजार तक ले जाने के लिए किया जाएगा। भारत में ड्रोन बाजार के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। कुछ समय पहले तक ये धारणा थी कि ड्रोन सशस्त्र बलों और दुश्मनों से लड़ने के लिए होते हैं। हालांकि किसान ड्रोन सुविधा ने कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है और यह ड्रोन तकनीक के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

किसान ड्रोन योजना, इस विषय में अभी आप ये चर्चा सुन रहे थे। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था, नवजात बछड़ों या बछिया को कितने दिनों तक खीस पिलाया जाना चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 से 5 दिनों तक। जी हाँ साथियों, नवजात बछड़ों या बछिया को 4 से 5 दिनों तक खीस पिलाया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया होगा। किसान साथियों, आज के इस कृषि जगत कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जुदाई फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अलका याग्निक और अभिजीत, धुन तैयार किया है नदीम श्रवण और गीत को लिखा है समीर ने।

फलक सबीर के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए जुदाई फिल्म का ये गीत। गीत रचना और स्वर दिया है फलक सबीर ने।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए अमन मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ गीत अरमान मलिक की आवाज में, फिल्म का नाम बदला।

जुदाई फिल्म की इस गीत से अब सुनिए अलका या अरिजीत सिंह का गाया गीत। धुन तैयार किया है गीत गंगोली और अंकित तिवारी ने, और गीत को लिखा है रश्मि सिंह ने।

क्रिएचर। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत फराह सायद और तुलसी कुमार के स्वर में। शब्द रचना और संगीत में पिरोया है मिथुन ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दर्द भरे नगमे सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे 4:30 पर।

4:40 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। बाहरों की शाम का समय होगा 4:45।

6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में मक्का पहाड़ की रहने वाली श्रीमती एस पुष्पलता से बातचीत होगी। बातचीत का विषय होगा स्वयं सहायता समूह की भूमिका और रोजगार के लिए अवसर।

महफ़िल-ए-कव्वाली का समय होगा 6:30, 7:15 पर मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20, 7:30 पर युवानी के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे।

ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से

0: करदाताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा शुरू करेगी एक महीने का सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से देश भर में होगी विभिन्न सेवा गतिविधियां। विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत की बढ़ी भागीदारी, करीब 70 प्रतियोगियों का दल 11 नई कौशल श्रेणियों में पहली बार करेगा मुकाबला। शहीद द्वीप में RAMP योजना पर सहायता शिविर, खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने और उद्यमों को मिलने वाली सुविधाओं की दी जाएगी जानकारी। और कैंबलवे में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, आवासीय परिसर में गांजे का पौधा बरामद और एक व्यक्ति गिरफ्तार। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में हिस्सा लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार टीम स्किल इंडिया 64 में से 63 प्रतियोगिताओं में भाग लेगी। इसके लिए करीब 70 प्रतियोगियों का दल चीन जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सबसे बड़ा और विविध प्रतिनिधित्व है। पहली बार जिन कौशल श्रेणियों में भारत हिस्सा ले रहा है उनमें दंत कृत्रिम अंग निर्माण और डिजिटल संवादात्मक माध्यम अभिकल्प जैसी श्रेणियां शामिल हैं। मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा कि नई कौशल श्रेणियों में भारत की भागीदारी देश के कौशल तंत्र के निरंतर विकास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को वैश्विक मानकों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार कर रही है। इसके लिए मजबूत साझेदारी और निरंतर अभ्यास पर जोर दिया जा रहा है। श्री विजयपुरम में आज विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम अंडमान महिला मंडल में हुआ। विकसित भारत युवा नेता संवाद युवा मामले और खेल मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत 2047 के लिए अपने विचार और नए समाधान प्रस्तुत करने का अवसर देना है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में होगा। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा भाग ले सकते हैं। भागीदारी की शुरुआत विकसित भारत प्रश्नोत्तरी से होगी। पात्र युवा 30 सितंबर तक माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। पत्रकार वार्ता में द्वीप समूह के युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, RAMP योजना शिविर और अवैध गतिविधि। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय उद्योग विभाग के समन्वय से RAMP योजना के तहत एक सहायता शिविर का आयोजन करेगा। यह शिविर 11 सितंबर को शहीद द्वीप के नील केंद्र सामुदायिक भवन में आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य लाभार्थियों को RAMP योजना के तहत मिलने वाली सहायता और सुविधाओं की जानकारी देना है। शिविर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके तहत खगोलीय पर्यटन के उपकरण खरीदने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलने वाली सहायता की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया, पात्रता और इसके लाभों के बारे में भी बताया जाएगा। प्रशासन ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों, होमस्टे संचालकों, उद्यमों और अन्य इच्छुक लोगों से शिविर में भाग लेने की अपील की है। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा और आपदा तैयारी पर 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम श्री विजयपुरम के गोलघर स्थित आपदा प्रबंधन भवन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के चौथे चरण में सरकारी और निजी विद्यालयों के 50 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन, विद्यालय सुरक्षा, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और अग्नि सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने व्याख्यान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा निदेशालय और आपदा प्रबंधन निदेशालय के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की वैज्ञानिक सुनंदा MV ने अंडमान और निकोबार में सुनामी के खतरे और उससे बचाव की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन आज हुआ। कैमलबे पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मिथुन कीर्तनिया के नेतृत्व में पुलिस ने स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के आवासीय परिसर में एक गमले में गांजे का पौधा मिला। पुलिस ने जोगिंदर नगर में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने आवासीय परिसर में गांजे का पौधा उगाने की बात स्वीकार की। यह कार्रवाई निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर की देखरेख में की गई। पुलिस ने लोगों से अपराध या किसी अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। इसके लिए 112-03192-265242 और 95318561522 पर संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में प्रसारण सहायक के पैनल में शामिल करने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अधिकतम आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता 2026 में द्वीप समूह के युवा खिलाड़ी JS विराट ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं द्वीप समूह के एक अन्य खिलाड़ी R हर्षद ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 9 सितंबर तक पौंडीचेरी में किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा शुरू करेगी एक महीने का सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से देश भर में होंगी विभिन्न सेवा गतिविधियां। विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत की बढ़ी भागीदारी। करीब 70 प्रतियोगियों का दल 11 नई कौशल श्रेणियों में पहली बार करेगा मुकाबला। शहीद द्वीप में RAMP योजना पर सहायता शिविर। खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने और उद्यमों को मिलने वाली सुविधाओं की दी जाएगी जानकारी। और कैंबलबे में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आवासीय परिसर से गांजे का पौधा बरामद और

0: एक व्यक्ति गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हुई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है, अंडमान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 12 सितंबर तक समुद्र में ना जाए। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जनसूचनाएं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नानकौरी माकाचुआ और अफराबे से होते हुए कैम्बलबे की यात्रा पर कल सवेरे 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान रविवार 13 को रात 9 कैम्बलबे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलयान की वापसी कल दोपहर 12 रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। कल सवेरे 6:15 पर एमवी स्ट्रेटाइनल शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा जलयान की वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 श्री विजयपुरम से छूटेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी कल ही 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर शाम 5 श्री विजयपुरम से जाएगा तथा जलयान की वापसी शुक्रवार 11 को स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

अब सुनिए जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 03192-240127, 03192-238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन

द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अभी आप जन सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हीरो हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। धुन तैयार किया अनु मलिक और गीत को लिखा राहत इंदौरी ने।

उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए गदर फिल्म का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा स्वर दिया है उदित नारायण ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती है तो कभी हमें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मुश्किल समय हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी ताकत को पहचानने के लिए आता है। इसलिए बुरे समय से घबराने के बजाय उससे सीखना चाहिए। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला निश्चित होता है। बस जरूरत है तो धैर्य रखने, खुद पर विश्वास करने और लगातार आगे बढ़ते रहने की। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संयोग और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हमें यह दिलाता है कि कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे व्यक्ति को अकेला छोड़ने के बजाय उसकी बात ध्यान से सुनना और उसका साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार, मित्र, शिक्षक और समाज मिलकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां व्यक्ति बिना डर या झिझक अपनी परेशानियां साझा कर सके। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील, दयालु और सहयोगी होना चाहिए। समय पर बातचीत, समय और उचित सहायता किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है। दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, शहर की जिंदगी हमेशा की तरह तेज रफ्तार से चल रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, किसी को घर लौटने की। लेकिन उस भीड़ में दो ऐसे लोग भी थे जिन्हें अभी यह नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदलने वाला है। आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। उसके लिए प्यार का मतलब हमेशा जिम्मेदारियों और परेशानियों से जुड़ा हुआ था। उसने अपने आसपास कई रिश्तों को टूटते देखा, इसलिए वह दिल के मामले में थोड़ा सावधान रहता था। मीरा बिल्कुल अलग थी। उसे बारिश पसंद थी, किताबें पसंद थी और छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना पसंद था। उसका मानना था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे शिकायतों में नहीं, खूबसूरत यादों में बिताना चाहिए। एक शाम अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। आरव बस स्टॉप पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागती हुई बस स्टॉप पर पहुंची। उसके हाथ में कुछ किताबें थी। वह उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक एक किताब उसके हाथ से गिर गई। आरव ने झुककर किताब उठा ली। शायद आपकी किताब आपसे ज्यादा जल्दी में थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने किताब लेते हुए हंसकर जवाब दिया। शायद उसे भी घर जल्दी पहुंचना था। वैसे किताब का नाम काफी दिलचस्प है। आप किताबें पढ़ते हैं? कभी कभी। और कभी कभी? कभी कभी सिर्फ खूबसूरत लोगों से बातें करता हूँ। मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसते हुए बोली, आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। आरव ने कहा,

नहीं, आज पहली बार कर रहा हूं। दोनों हंस पड़े। बस आई और मीरा उसमें बैठकर चली गई। आरव बस को दूर जाते हुए देखता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि वह उस अनजान लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा था।

दोस्तों, अगली सुबह वह सामान्य से कुछ जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच गया और उसकी उम्मीद सच हो गई। मीरा वहां खड़ी थी। उसने आरव को देखते ही कहा, आज कोई किताब नहीं गिरी? आरव मुस्कुराया, इसलिए मैं थोड़ा निराश हूँ। क्यों? क्योंकि कल किताब के बहाने आपसे बात हुई थी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आज बिना किसी बहाने के बात कर लीजिए। उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बस स्टॉप उनकी मुलाकात की जगह बन गई। पहले कुछ मिनट, फिर आधा घंटा और फिर कभी कभी बस निकल जाने के बाद भी दोनों वहीं खड़े बातें करते रहते। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी, मीरा को आरव की शांत आंखें। आरव को अच्छा लगता था कि मीरा उसकी छोटी छोटी बातें याद रखती थी। मीरा को अच्छा लगता था कि आरव उसके सपनों का मजाक नहीं उड़ाता था। एक दिन मीरा ने बताया कि उसका सपना था कि वह एक दिन बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोले। आरव ने कहा, तुम जरूर खोलोगी, इतना भरोसा? तुम्हारी आंखों में सपना दिखता है। मीरा कुछ पल उसे देखती रही। और तुम्हारा सपना? आरव ने कहा, एक ऐसी जिंदगी जहां शाम को घर लौटने पर कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, बस इतना? हाँ, क्योंकि अगर इंतजार करने वाला अपना हो तो साधारण जिंदगी भी खूबसूरत लगती है। उस दिन दोनों देर तक चुप रहे। शायद दोनों को अपने दिल में हो रही हलचल का एहसास होने लगा था। कुछ सप्ते बाद एक शाम बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा के पास छाता नहीं था। आरव ने अपना छाता खोलते हुए कहा, चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है, आज रास्ता बदल गया। मीरा मुस्कुरा दी। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी। आसपास की आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। कुछ देर बाद मीरा ने पूछा, आरव, अगर किसी को प्यार हो जाए तो उसे कैसे पता चलता है? आरव ने उसकी तरफ देखा, जब सामने वाला खुश हो तो खुद खुशी महसूस हो।

और उसके दुख में बिना कहे उसका साथ देने का मन करे। मीरा ने धीरे से पूछा, और अगर सामने वाला दूर चला जाए? आरव कुछ पल चुप रहा, तब पता चलता है कि वह सिर्फ पसंद नहीं, वह जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आरव रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बहुत पहले हो गया था। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बात कह दी।

दोस्तों, उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे के सपने को समझते थे। वे घंटों बातें करते, साथ चाय पीते और कभी कभी बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के पास बैठे रहते। लेकिन खुशियों के साथ जिंदगी ने एक परीक्षा भी रखी थी। मीरा को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी शहर जाना पड़ा। जाने से एक दिन पहले दोनों उसी बस स्टॉप पर बैठे थे। मीरा ने कहा, मैं कुछ महीनों के लिए ही जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। आरव ने कहा, मुझे पता है, फिर इतने उदास क्यों हो? क्योंकि कुछ महीने उन लोगों के लिए बहुत लंबे होते हैं जिन्हें हर दिन एक दूसरे की आदत हो चुकी हो। मीरा ने उसका हाथ थाम कर कहा, वादा करो कि दूरी हमें बदलने नहीं देगी। आरव ने कहा, वादा। अगले दिन स्टेशन पर दोनों की आंखें नम थी। ट्रेन चल पड़ी। मीरा खिड़की से हाथ हिलाती रही और आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। शुरुआत में सब ठीक रहा, हर सुबह संदेश, हर रात लंबी फोन कॉल। लेकिन कुछ समय बाद मीरा की पढ़ाई बढ़ गई और आरव

के काम का दबाव भी। फोन कॉल छोटी होने लगी, फिर संदेश के जवाब देर से आने लगे और फिर छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होने लगी। एक रात मीरा ने कहा, तुम बदल गए हो। आरव ने दुखी होकर कहा, शायद तुम भी। फोन कट गया। उसके बाद कई दिनों तक दोनों ने बात नहीं की। दोनों एक दूसरे को याद करते थे लेकिन कोई पहले झुकना नहीं चाहता था। एक रात मीरा ने पुरानी तस्वीरें देखी, उसे बारिश वाला दिन याद आ गया, उसे वह पहली किताब याद आई, उसे आरव की वह बात याद आई। आज रास्ता बदल गया, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते हमेशा इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो जाता है, कभी कभी सिर्फ अहंकार और गलतफहमियां प्यार से बड़ी हो जाती है। उसने फोन उठाया और आरव को कॉल किया। काफी देर बाद फोन उठा। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर मीरा ने कहा, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। आरव ने धीमे से कहा, मुझे भी नहीं। तो फिर से शुरू करें? मीरा मुस्कुराई। इस बार बिना किसी गलतफहमी के उनका रिश्ता फिर से ठीक हो गया।

दोस्तों, समय बीतता गया और आखिरकार मीरा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आई। वह सीधे उसी बस स्टॉप पर पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आरव वहां पहले से खड़ा था, उसके हाथ में वही पुरानी किताबें थी। मीरा ने उसे देखकर पूछा, तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा? आरव ने कहा, किताब नहीं, हमारी कहानी संभाल कर रखी है। मीरा की आंखें भर आई, तभी बारिश शुरू हो गई। आरव ने छाता खोला, मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। याद है? उसने पूछा। सब याद है। पहली मुलाकात? हाँ, पहली बार।

रिश, हाँ। पहली लड़ाई, आरव हंस पड़ा, वो भी। मीरा ने पूछा, और प्यार? आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, वो सबसे ज्यादा याद है। कुछ साल बाद दोनों ने अपने सपनों को सच कर दिया। आरव ने एक छोटा सा किताबों का कैफे खोला और मीरा ने उसी के साथ बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की। कैफे के दरवाजे के पास एक बोर्ड लगा था, कुछ मुलाकातें संयोग नहीं होती, वे जिंदगी की सबसे खूबसूरत योजनाएं होती है। एक शाम मीरा ने आरव से पूछा, अगर उस दिन मेरी किताब सड़क पर नहीं गिरती तो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो शायद मैं किसी और बहाने से तुम्हें ढूंढ लेता, और अगर मैं तुमसे बात नहीं करती तो मैं इंतजार करता। कितने समय तक? आरव ने कहा, जब तक दिल कहता कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मीरा मुस्कुराई। बाहर बारिश हो रही थी, दोनों खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रहे थे। उनकी जिंदगी में अभी परेशानियां थी, कभी मतभेद होते, कभी बहस भी होती, लेकिन उन्होंने एक बात सीख ली थी, प्यार का मतलब परफेक्ट रिश्ता नहीं होता। प्यार का मतलब है किसी की कमियों को समझना, उसकी खामोशी को सुनना, उसके सपनों का सम्मान करना और मुश्किल समय में उसका हाथ छोड़ने के बजाय उसे और मजबूती से थामना। कभी-कभी जिंदगी हमें किसी इंसान से सिर्फ इसलिए नहीं मिलाती कि वह हमारे साथ कुछ समय रहे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें यह सिखा सके कि सच्चा प्यार कैसे होता है। आरव और मीरा की कहानी भी ऐसी ही थी। एक गिरी हुई किताब से शुरू हुई कहानी ने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का साथी बना दिया। और हर बार जब बारिश होती, मीरा मुस्कुराकर आरव से कहती, देखो आज भी बारिश हमारी कहानी याद कर रही है। आरव हंसकर कहता, नहीं मीरा, बारिश नहीं बदली, बस हमारी कहानी और लंबी हो गई। और सच में उनकी कहानी कहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चे प्यार की कहानियां का अंत नहीं होता, वे बस हर नए दिन के साथ एक नया अध्याय लिखती रहती है।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कर्ज फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक। धुन तैयार किया है संजीव दर्शन और गीत को लिखा है समीर ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं रिश्ते फिल्म का ये गीत। अब्बास कतका के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने।

0: and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए काश आप हमारे होते फिल्म का ये गीत। गीत रचना समीर की तथा स्वर दिया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए समीर का लिखा एवं अनिल वी कुमार का संगीतबद्ध किया हुआ गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम कुछ तो है।

0: हो तू तू, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, हरिहरन और साथियों के स्वरों में। शब्द रचना गुलजार की तथा संगीत में पिरोया है विशाल ने।
1: I said name's Aditya. You can call me Adi.
2: I'm

0: हाय, फील लाइक अ स्पिन। ऊपर चलोगी?
1: कहाँ?
0: मार्स। मार्स पे चलेंगे।
1: इस प्लेन में?
0: ऑफ कोर्स। डोंट अंडरएस्टिमेट दिस फ्लाई, इट कैन फ्लाई रियली हाई। चलो।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार और गौरवगान। पहले सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

चयनित अभ्यर्थी को 2,50,000 प्रति माह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रिज्यूम 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रिज्यूम चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्रीविजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूम @pmp@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंतर के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधी प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड की विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के vacancy/announcement सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के संपर्क किया जा सकता है। ये था रोजगार समाचार और अब सुनिए गौरव गान।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026.

0: under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
3: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
3: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

0: भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
3: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
3: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहे ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
3: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
3: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल प्रयुक्त पदार्थ हैं जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
1: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
4: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी,

0: बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं, अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउसहोल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग-अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए, जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20 से 30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम, माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं।

0: हैं, वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाती हैं, वो चाय पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है, शहद, शहद पिलाना है, क्योंकि रस्में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा। और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की, वो तो डेफिनेटली कम होगी। अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है। एंड आगे जाके, जैसे नीना मैम ने बोला, कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ। तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दे कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे, तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे, बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन बनेंगे। और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की IQ बहुत बढ़िया हो, NEET JEE निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, तो उसके IQ पॉइंट्स में 20 से 30% की बढ़त हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है। और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है, जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं, मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए, और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया
2: जी
1: जाता है, पोषण
2: जी
1: पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये
2: बिल्कुल
1: उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में, NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना, तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड, MCP कार्ड बनाया है।

0: नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो एमसीपी कार्ड ना आप पूरा पढ़िए। हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग आल्सो। जो RUTF की हम जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे, तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक ओपीडी के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे, और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया। RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को। आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है, तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले, और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनबाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक ओपीडी होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का। बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे, या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में, जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं, तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है। और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से।
1: जी बिल्कुल, पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है। जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं। इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए, जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है। और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है। और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की

0: हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.5 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है उसमें, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके। जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को ये जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो
1: जी
2: हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज होती हैं, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है स्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले
1: जी
2: हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना।
1: जी
2: जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए,
1: जी
2: तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे ही, एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा, एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिश्ड हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिश्ड हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिश्ड हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है, एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें, बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं।
1: जी
2: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय

0: स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
1: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है। तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा, पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
0: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है, और जो भी आपके मन में शंका होती है आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें, एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओं को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए, अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी, उसके बाद तो सब कुछ पजल की तरह फिट हो जाएगा।
0: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है, और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू आनंद जी,
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

आनंद मिलिंद द्वारा गीत रचना और संगीत दिया हुआ गीत, फिल्म का नाम कुर्बान और स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत मोहम्मद अजीज, सारिका कपूर और की आवाज़ों में। फिल्म का नाम 20 साल बाद।

प्यार का मंदिर। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक के स्वरों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम सरगम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हुई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है, अंडमान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 12 सितंबर तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 19वीं तिथि तदनुसार 10 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 38 सेकंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि हमें सही राह भी दिखाता है। जीवन में ज्ञान, प्रेम और अच्छे विचारों का प्रकाश हो तो हर कठिन रास्ता आसान बन जाता है।